हर वक्त तेरे मन दी हरेक कामना पूरी कीती है। सेवका वांग उस दी भगती करदा रहो। अते हे दास नानक आख, मैं उस प्रभु तो सदके जांदा हां, जिसने विघना दे टाकरे हर वेले पूरे तौर ते इज्जत रखी है।

0: रहे जल बिन कुंभ न हो। ज्ञान का बधावन रहे गुरु बिन ज्ञान हो। ओ गुरु बिन ज्ञान हो।
1: बाबा जी थोड़ी इस छबील दे आसरे साडा पेंडा कटिया जाता
2: आसरा उस आधार का मैं देख सेवादार हाँ।
1: खुश रहो बाबा जी खुश रहो।
2: आप उधर ले पी। ओ ले पी।
3: जल पाया परमेश्वर पाया
2: अब मोरे जलत राम जल पाया। राम अधिक तन जलत बुझाया मन मारण कारण बन जाइए सो जल बिन भगवंत न पाइए।
4: सो जल बिन भगवंत न पाइए।
2: हाँ बेटी।
4: बाबा जी असी भी मन जल लग रहे थोड़े को हजारे यात्री आते जाते शायद तुम्हें कुछ पता हो
2: का पता
4: ए मेरे पति ने इन्होंने सुपने विच एक थां वेखी सी पानी दी छपड़ी आदि कंडे ते बेरी दा दरख्त ते बेरी ते कां बैठदे ने
2: छपड़ियां ते कई ने ते बेरी दे दरख्त भी बेअंत हैं।
4: नहीं बाबा जी आज बेरी ते इक्को ही होएगी जिस तो कां उड़ के छपड़ी च डुबकी लैंदे ने ते चिट्टे हो उड़ जांदे ने।
2: चिट्टे हो उड़दे जांदे ने।
3: हां बाबा जी ते नाली आवाज आ रही सी
4: कागू हंस करे
2: कागू हंस करे कागू हंस कर ये तो गुरु नानक देव जी की बाणी है। तुसी इंज करो सिर्फ गोंदवाल चले जाओ उत्थे गुरु अमरदास जी का दरबार है गुरु नानक दी अलाई बाणी का सोमा।
4: गुरु अमरदास।
2: हाँ बेटी उन्होंने हर चीज का ज्ञान है उन्होंने दर्शन करदे ही तुहाडे पैर अपने आप तुहानू उस मंजिल वल ले जाणगे जिस मंजिल तुहाडे दिल च तांगे।
4: किन्नी दूर है गोइंदवाल।
2: एथों थोड़ी दूर दरिया का पत्तन है उत्थे बेड़ी पैंदी है बस दरिया पार दे गोइंदवाल।
4: अच्छा बाबा जी असी चलने हैं।
2: परमेश्वर भली करेगा। कबीर सेवा को दोए भले एक संत एक राम राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम।
0: उठ परी दायूज साज सुबह नवाज गुजार जो सिर साई नानिवे सो सिर कफल उतार जो सिर साई नानिवे सो सिर की देखाए उन्हें पैठ जलाए बालन संदे थाए बालन संदे थाए।
5: ओ साहब जी की गल है पहला तुसी ने कहा दिता
4: असी असी किस तरह जानते सोचते हैं पहले पूछ लिया होंदा
5: की पूछना सी
4: सारे मुसाफिर ने तुहाडी सेवा च कुछ ना कुछ भेंट किया है पर असी साडे कोल ना दिल चौल ना धर्म ना तमड़ा।
5: ओ चलिए पहले मैं कोई कम कमाइया लिए तो नहीं करता मैं तो गुरु के दर्शन आई हूं संगत की सेवा करके अपना जन्म सफल कर रहा
4: फिर भी तुहाडियां लोड़ां
5: मेरिया लोड़ां तो खुदावंद पूरियां करता तो होर मैं चाहिए भी की जो कुछ मैं लोग दे जाते ने जाके गुरु के दरबार चढ़ा दिना दिन वेले बेड़ी चढ़ाना तो राति लंगर चो ढिड भर के बाहर थड़े दसो जाना मैं उगन हारा कोगन पले नहीं
4: तन हो तुसी
5: तन ते मैं नहीं पैना तन तो गुरु महाराज है जरा सब नू अपनी मिठी बाणी का अमृत पिलांदा है और दर ते जाओगे तो उन्हू कहना जिन्हें सानू ए सागर पार कराया उस अवगन हारे नू इस पाव सागर तो पार उतारो।

आख्या फरमान दे। आम करके दुनिया कन रस विच उलझी है, ए आत्म रस दी खुराक है, आत्म रस जै जाने ही सो है खालस दी।

माता जी दा कोरा जवाब सुन के जलाद परत आया, कंध मुकम्मल तैयार हो गई, साहिबजादे असह ते अकह कष्ट सहार दे होए शहीदी पा गए, धरती कंब उठी, आसमान डोल गया।

एक है हरी हरी, ये ऐसा एक शुभ ते सच्चा विचार है जिसनु एक सच्चा ते सुच्चा भगत ही अपने जीवन दे विच कह सकता है, क्योंकि जिस दा विचार एक परमात्मा दे नाल मिल गया, जिस दा हर रोम रोम प्रभु चरणा दे विच रम गया और जिस दा हर स्वास परमेश्वर दे नाल मिल गया, ऐसा भगत ही ये कह सकता है कि हमारे एक है हरी हरी। आन अवर सिंजान ना करी ओ परमात्मा अपने भगत नू गुरु राही नाम देवांदा है, जैसा कि मालिक ने शब्द दे विच फरमान कीता है।

जप भी करता है और यथा शक्ति अगर ज्यादा कोशिश करे ते तप भी कर लेंदा है। आम देखण दे विच आउंदा है कि रब दे नां ते कई व्रत भी रखते हैं और रोजाना दा नेम भी करते हैं, सवेरे उठ के परमात्मा दी भगती करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। साहिब फरमान करते हैं कि सारा कुछ परमेश्वर की कृपा ना

ताप जो तप है, व्रत है, नेम है, आचार तो मतलब करैक्टर है मनुख दा, और व्यवहार जो रोज दा व्यवहार करदा है, जात जो कम तो पहचानिया जांदा है। साहिब फरमान करदे हन कि ए सारा कुछ जे मनुख करदा होया अपने गुरु दे अर्पण कर देवे ते मानो के जो त्याग दे विच उसनु सुख प्राप्त होवेगा, जो शांति प्राप्त होवेगी, ओ ही सच्चा

के निर्जुन नरूप हो के निर्जुन पूर्वी न पार पावे हिंगला हिमाल जावे गोर गर देजी कुल गावे तेरा नाम है पूर्वी न पार पावे हिंगला हिमाल जावे गोर गर देजी कुल गावे तेरा नाम है जी दुख दुख सद पौन सद लगे तिक

चिंता मिट गई है और ना ना मेनू डर आउंदा है ते ना मेरे अंदर कोई चिंता आउंदी। इसलिए कि तू मेरा सारिया थावां ते राखी करना, सारिया थावां ते तू मेरा राखा है। जे तू मेरे नाल है ते मैनू डर किसदा, मैनू डर किसदा। जे तू मेरे नाल है तो मैनू अग की करूगी, जे तू मेरे नाल है तो मैनू कोई बिपता संसार दी सता नहीं सकती और मेरा कोई नुकसान और डरा धमका नहीं सकती मैनू, क्योंकि तू मेरा राखा है सारिया थावां ते। इसे लिए मालिक सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, हजूर ने बड़े मान विच बड़े जोर विच किया कि एडा मेरा वाहिगुरु वड्डा है कि भावे मैं अग विच भावे मैं देग विच भावे तत्तियां रेतां सीस ते पईआं पर मैनू तत्ती वाह भी नहीं लगी। ये कौन कहेगा? खसम वाला, मालक वाला, गुरु वाला जिहड़ा है ही बेगुरा, वो कहेगा कि जिसनू कदी पिता दी गोद विच बैठन दा सुभाग समा ही नहीं प्राप्त होया, वो मान की कर सकदा किसे ते। जिसने कदी पिता कोलों अमृत ही नहीं पीता, वो कह सकदा है कि मेरा बापू मेरा पिता मेरे वास्ते आ करेगा? नहीं, नहीं कह सकेगा, उन्हूं अपनी कमजोरी दा पता है। लेकिन सतगुर सच्चा पातशाह बड़े तान नाल बड़े मान नाल हजूर फरमांदे ने, ताती वाओ न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई, सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई। राम नाम औखद दिया एकै लिव लाई, राख लिए तिन रखन हार सब व्याध मिटाई, कहो नानक कृपा पई प्रभ पए। उस मान विच आके तान विच आके असी कौन हां? सारे बच्चे सारा परिवार सतगुरु जी दा, बच्चे और बच्चियां परिवार मालिक सतगुरु, सतगुरु परिवार दा मालिक है साडा। तो असा ए तो कदी नहीं कहना कि असी सतगुरु दा परिवार हां, पर आपां पढ़ लईए जरूर, सारी संगत पढ़ियो। गुरु अर्जन देव अकाल पुरख की गोद विच ते सारी संगत गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दे चरणा उते, फोटो ते इवें आएगी ना, पता ते इवें ही लगेगा ना, अकाल पुरख की गोद विच अकाल पुरख दे चरणा उते साहिब गुरु अर्जन देव सच्चा पातशाह और उन्हां दे चरणा उते आपां सारे। उस मान विच आके सतगुर सच्चे पातशाह हजूरी विच जिवें उन्होंने माण किया, आपां भी माण करिए ने सारे। तो बोलो सारे बीबियां उच्ची आवाज विच और बड़े कंट्रोल विच, गलबात छोटी छोटी साडे को नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सत्संग है, सचखंड है, वैकुंठ है, इसी महिमा का पारावार नहीं। जे असीं नहीं सोचांगे तो बेअदब होवांगे। सारे पढ़ियो।

हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक मुंह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक अवगुण कौन चितारदा

ऐसी। पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी, बारक मुख मांगे सो देना। पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी, बारक मुख मांगे।

आपे ही सब आप है प्यारा, आपे थाप उथापे, आपे वेख विगसदा प्यारा, कर चोज वेखे प्रभ आपे, आपे वणतृण सबत है प्यारा, आपे गुरमुख जापे, जप मन हर हर नाम रस ध्रापे, अमृत नाम महारस मीठा, गुर शब्दी चख जापे, आपे तीरथ तुलहड़ा प्यारा, आप तरे प्रभ आपे, आपे जालो ली हर आपे, आप अभुल न भुलई प्यारा, दूजा अवर न जापे,

आपे धरती आप है राहत आप जमाए पिसावे आप पकावे आप भांडे दे परोसे आपे ही बैखावे आपे जल आपे दे छिंगा आपे चुली भरावे आपे संगत सद

कतहु सुचेत होय के चेत न कुचार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो, कतहु भिखारी होय के मांग तू फिर तू भीख, कहु महादान होय के मांगो धन देत हो, कहूं महाराजन को दीजत अनंत दान, कहूं महाराजन ते छीन चित लेत हो।

कहूँ देवतान के दीवान में विराजमान, कहूँ दानवान को गुमान मत देत हो।

कऊ शस्त्रधारी कऊ विद्या के बिचारी कऊ मारत आहारी कऊ नार के नकेत हो कहूं देव बानी कहूं सारधा भवानी कहूं मंगला मेड़ानी कहूं श्याम कहूं सेत हो।

वेद व्यास जिन्हां ने गुरु नानक सच्चे पातशाह तो लै करके गुरु अंगद देव जी महाराज, गुरु अमरदास जी महाराज, गुरु रामदास जी महाराज ते गुरु अर्जन देव जी महाराज दे जीवन च चात मारी, गहरे जा करके के गुरुआं दे जीवन कैसे सन, कैसियां कैसियां सेवावां गुरु महाराज ने की।

अनाज लियांदा, लिया करके आप पकाया ते पका करके सारे साधुआं नू भोजन छकाया, पानी पिलाया।

नहीं कोई रंक भी सेवा कर सकता है। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने एक मटका लिया, एक मग लिया, ते आंदे जांदे राहियां नूं पानी पिलाना शुरू कर दिता। भाई जिथे पानी पिलाया गुरु नानक सच्चे पातशाह ने, अज ओथे गुरु नानक प्याओ दा गुरुद्वारा बनिया होया है। संगतां जांदियां हन, प्यासियां जांदियां हन, तृप्त होके आउंदियां हन, मन दियां आशावां लेके जांदियां हन, मनोकामना पूरियां करवा के आउंदियां हन। बाबा नानक जी दी इस प्रेरणा नूं ले करके, इस सेवा नूं सामने रखदे होए, भाई साहिब भाई गुरुदास जी सारिआं नूं उपदेश

साहिब अस्त फतेह गोविंद सिंह शाहे शाहान फजले सच्चा साहिब अस्त। ए लफज जेड़े लफज आप जी सरवण कर रहे हो ए लफज जेड़े सन

बाबा बंदा सिंह बहादुर ने जारी किया। उस सिक्के ते बाबा बंदा सिंह बहादुर ने ए लफज लिखाए जेड़े के इतिहासिक लफज हन। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपने नाम ते सिक्का नहीं चलाया बल्कि धन गुरु नानक साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के नाम ते ए सिक्का चलाया।

चालू नहीं होया एदे पिछे बड़ी कालना। आओ ए जानन वास्ते थोड़ा जिहा इतिहास नु देखिए कि किस तरह सिख राज दा ए पहला सिक्का बाबा बंदा सिंह बहादुर ने शुरू किया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दसवें गुरु जिन्हां महापुरखां दी आत्मक अवस्था इस शिखर ते सी कि ओ धर्म अते देश दी रखिया लई अपना सरबंस वार दें, जिन्हां अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दिता हिंदू धर्म की रक्षा वास्ते, अपने बच्चियां नूं कुर्बान कर दिता, अपने प्यारे साथियों नूं वारी वारी मौत दे मुंह विच धकेल दिता, अपना धन दौलत संपत्ति सुख चैन जवानी सब कुछ इउं स्वाहा कर दिता जिवें कोई यज्ञ करन वाला किसे महान हवन कुंड विच आहुति ते आहुति देई जा रहा होवे। जिस दी महानता दा ए हाल सी कि ए सब कुछ करदिया होया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने मथे ते वट नहीं पाया, बुल्लां विचों हाय नहीं निकली, कदी अखां तों अथरू नहीं वगाए, कोई साधारण आदमी नहीं सन। उस साधारण आदमी भावें किन्ना भी देश भगत क्यों ना होवे निस्संदेह अजिहा नहीं कर सकता जो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने किया। अजिही महानता केवल उन्हां महापुरखां विच ही हुंदी है जिन्हां सैकड़े जन्म योग साधन बतीत कीते होण अते फिर जिहड़ा महापुरश शिखर ते पहुंच जांदा है ओही ही भविख नूं देख सकदा है जिस नूं साधारण नजरां वाले नहीं वेख सकदे। इस करके श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज हिंदुस्तान दे विच जगह जगह हुंदे हुए नादेड़ गोदावरी नदी दे किनारे वल जा पहुंचे। क्यों? गुरु साहिब जी उस आदमी नूं जेड़ा के वैराग दी नींद विच सुत्ता पिया सी उसनु वैरागमय नींदर तू जगाउण आए ओ आदमी जी दा नां सी माधोदास। इस तू पहला कदी उसका नाम नारायण गिरी भी सी अते इस तू पहला उसके माता पिता उसनु लक्ष्मण देव कहंदे हुंदे सन।

गोदावरी दे कंडे आश्रम बना के रहण वाले जिदे आश्रम वाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जा रहे ने, इस बारे थोड़ा जा ज्ञान जरूरी है। लिखे है लक्ष्मण देव दा जन्म जम्मू अते कश्मीर दी एक रियासत राजौरी विखे होया। जम्मू कश्मीर दी एक प्रसिद्ध रियासत जिदा प्रसिद्ध नगर राजौरी जिथे लक्ष्मण देव दा जन्म होया। इन्हां दे पिता एक मामूली जहे जागीरदार सन और एक दिन शिकार खेडदिआं लक्ष्मण देव ने एक तीर दे नाल एक हिरनी नूं मार सुटिआ, पर ओ हिरनी गर्भवती सी। जदों हिरनी नूं तीर मारिआ हिरनी जिहड़ी सी मरी, ओदे पेट विच दो

आश्रम बना के रहन लग पया अते अपना समा योग साधना विच बतान लग पया। इस गोदावरी दे किनारे

योग साधना करदिया बीत गया। इत्थे ओ सारी दुनिया तो दूर सारी दुनिया नाल रुस के कोर तपस्या विच जुट गया। इसे जगह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आज अपने सिखां दे नाल घोड़ियां ते सवार होके पधारे हन। जिस वक्त माधो दास दे आश्रम पहुंचे ते माधो दास उस वेले अपने डेरे विच नहीं सन। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज माधो दास दे डेरे पहुंचे अते जाके माधो दास दे पलंग ते विराजमान हो गए। माधो दास दे चेलिया ने कहा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं कि ए साडे स्वामी दा पलंग है, आप जी इत्थे ना बैठो। पर गुरु साहिबां ने कहा असां जिथे बहना सी बह गए हां क्योंकि गुरु दे कौतक गुरु जान दे। उधर चेले जंगल विच भजे गए। माधो दास बैरागी नूं जाके कहन लगे तुहाडे पलंग ते एक बड़ा तेजवान पुरश आके बैठ गया, लाओ लश्कर भी नाल है। उहदे चेहरे अगे किसे दीआं अखां नहीं हुंदीआं। तां माधो दास गुस्से विच आ गया, कहन लगा दिखावे पलंग पर बैठने का स्वाद कि जेड़ा मेरे पलंग ते बैठा है मैं उन्हूं पलंग तों थले डेग देंगा और अपनी योग शक्ति दे नाल जंगल विच बैठे हां पलंग नूं उल्टाण दी कोशिश कीती। पर माधो दास बैरागी पलंग नूं उल्टा ना सकिया। जद माधो दास बैरागी ने पूरा जोर लाया पलंग उल्टाण वास्ते, पलंग ना उल्टा सकिया तां समझ गया कि मेरे पलंग ते जिहड़ा बैठा है ओ कोई मामूली इंसान नहीं। ते माधो दास बैरागी अपने आसन तो उठिया और ए देखण वास्ते आश्रम वल तुर पिया

तेरा की तू कौन है तामा तू दस बैरा की चरणा नु चुमदा होया कहन लगा मैं तुहाडा बंदा गुरु जी मैं तुहाडा बंदा मैं तुहाडी बड़ी उड़ीक कीती बड़ा ढूंढिया बड़ा लभिया अज तुसी मिले मैनू शांति नसीब होई मेरी मंजिल मैनू मिल गई। गुरु जी ने माधुदास नू उठा के अपने कोल बिठाया प्यार नाल किया जानदे होए भी पुछदे ने तू बैरागी क्यों बने तो माधुदास ने अपनी कहानी सुनाई एक हिरनी दा मैं शिकार कीता ओ मरी ओदे बच्चे भी तड़प तड़प के मर गए

अनेकां वस्तुआं दे के बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं जालमां दा नाश करन वास्ते नादेड़ तों गोदावरी दे कंढे तों

माता सती ने उन्हां नूं कहा, शंकर भगवान नूं, भगवान मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, उन्हां सारियां नूं बुलाया है पर ना मैनू बुलाया ना तुहानू बुलाया, परंतु वह मेरे पिता का घर है इसलिए मैं जाना चाहती। शिवजी भगवान ने कहा, बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए, पर सती जी ना मने तो भगवान ने जाने की इजाजत दिती। सती जिस वक्त अपने पिता दशक प्रजापति दे महलां विच पहुंचे जिथे यज्ञ हो रहा सी, तां दशक प्रजापति ने सती नूं कोई आदर ना दिता, सगा शंकर भगवान का भी अपमान किया। जदों इस गल का सती ने बुरा मनाया तां दशक ने अगू सगा होर कहा, ओ नंग तड़ंग शिवजी भगवान, मैं ते कदी भी राजी नहीं सा उसनूं अपना जवाई बना के। सती ए बर्दाश्त ना कर सके, उन्हां योग साधना दे नाल अपने शरीर विचों अग पैदा कीती, सड़ के भस्म हो गए। शिवजी भगवान नूं पता लगा तां उन्हां ने उसे वक्त अपनी एक लिट पुट के सुटी, जिदे विचों भयंकर आवाज करदिया होया महाभैरव वीरभद्र वगैरह पैदा होए, ते जिन्हां ने आग्या मंगी तां भगवान ने कहा, जाओ उन्हां दुष्टां दा नाश करो जिन्हां ने सती दा अनादर किया। तां उसे वक्त उन्हां ने दशक प्रजापति दा सिर वढ के यज्ञ दी अग्नि विच सुट दिता। हर पासे खून दे फुहारे छुट पए, सारे लोग इउं नसन लग पए जिउ प्रचंड महातांडव नचदी होई परलो आ गई होवे। इसे तरह एक कथा शिव पुराण दी, शिवजी भगवान ने महाभैरव नूं अपने तेज विचों जिवें पैदा किया, अपने अलेटा

पंजाब वाल तो रहा जेड़ा कियामत जगाउंदा पचाल लियाउंदा खून दिया नदियां बगांदा होया पंजाब वाल वध तुरिया। किसी ने पूछया बंदा सिंह तुसी ये की कर रहे हो ता बंदा सिंह बहादुर ने कहा मैं अपने वास्ते कुछ नहीं कर रहा मैं जालमा दा नाश कर रहा उन किलियां नूं ढा के ढेरी कर देंगा जिन्हां विच जुलम हुंदे ने उह शहर तबाह कर देंगा जिन्हां शहरां विच मजलूमां नूं जालम तंग करदे ने। इह कहिंदा होया बंदा सिंह बहादुर पंजाब नूं तुरिया जा रहा है।

जगह जगह जालमां नूं सजा दिंदा होया सरहंद दे लागे जा पहुंचिया। सरहंद जेड़ा कि पंजाब विच एक ऐसा शहर सी जिहदी तुलना किसे समय आगरे दे नाल लोक करया करदे सन। आगरे शहर तो भी वधिया जे कोई शहर है तां सरहंद है। जिस वक्त बाबा बंदा सिंह बहादुर सरहंद दे कोल पहुंचिया अपनियां फौजां दे नाल और इस सरहंद वल बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कहर दिया निगाह नाल देखिया, वो नजारा उन्हां दी अखां दे सामने आ गया। इस सरहंद विच वजीर खान ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे छोटे साहबजादे जिन्हां दी उम्र 8 साल तो भी थले, उन्हां जिउंदियां नूं इत्थे नीहां विच चिण के शहीद कर दिता गया। वह नजारा अखां सामने आया, अखां गुस्से नाल लाल हो गईयां। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपने फौजियां नूं वंगारदिया होया आखिया, एहो ही वह सरहंद है जिस जगह मेरे गुरु दे नन्ने नन्ने मासूम बच्चियां नूं द्वार विच चुणिया गया। बचाना इस शहर का नाम निशान मिटा दे। वजीर खान ओदे अहलकार सब खत्म कर दे, नीहां विच साहबजादे चिणे गए। देखो कोई दीवार ना रहे, कोई मकान ना रहे, कोई किला ना रहे, कोई छत ना रहे, हाल चला दो, इस शहर नूं मिट्टी च मिला दो। देखदिया देखदिया बाबा बंदा सिंह बहादुर दी फौज ने सरहंद ते हमला कर दिता। वजीर खान अपने वजीरां नाल अहलकारां नाल जरनैलां दे नाल लड़न वास्ते आया, पर बाबा बंदा सिंह बहादुर अगे कोई टिक ना सकिया। देखदिया देखदिया शहर साड़ के सुआह कर दिता, किले ढा दिते, मकान ढा दिते, शहर नूं ढा ढेरी कर दिता। वजीर खान वह भी मारिया गया, उहदे वजीर अहलकार जरनैल सिपाही सब मारे गए। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद ते फतेह कीती। जिस वक्त सरहंद नूं फतेह कीता उहदी इट नाल इट वजा दिती और फिर फतेह दा डंका वजा के ए नहीं कहा कि मैं जितया, हाथ जोड़े ते कहन लगे, धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह आप दी कृपा द्वारा साहबजादियां दी शहीदी दा अज मैं बदला ले लिया। और 7 साल जुल्म दे खिलाफ तबाही अते बर्बादी दा ए तूफान बाबा बंदा सिंह बहादुर ने उठाई रखिया। बाबा बंदा सिंह बहादुर बेशक आप ना रहा, पर तुरकां दी हकूमत नूं उसने मिट्टी विच मिला के रख दिता। अते जदों फतेह कीती, तुरकां दी हकूमत खत्म कीती, तां उस वक्त बाबा बंदा सिंह बहादुर ने फिर सिख राज दा पहला सिक्का चलाया और उसते अपना नाम नहीं गुरु दा नाम लिखाया। सिक्का जद हर दुआलम तेगे नानक साहिब अस्त, के ए सिक्का दो जहाना वास्ते है। गुरु नानक दी तलवार अते गुरु गोबिंद सिंह जी दी कृपा द्वारा

फिर सब देश दे संतर मैं प्रभ देखन को बहुत मन चाहिया मन तन काट दियूं गुर आ गए जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखिया कोई आंश दे साथ

उस वेले वो अकाल पुरख किसे ना किसे ने इस संसार ते भेज दिया। कलयुग विच जद जुलम और पापां दी अत हुई धरती ने पुकार की थी, ता उस वेले उस अकाल पुरख ने सुनी पुकार दातार प्रभु गुरु नानक जग माहे बठाया। इस संसार विच तन गुरु नानक साहब प्रगट हुए और सब तो वड़ा काम ए कीता, चार वर्ण खत्री ब्राह्मण सूद वैस चारा ने एक जगह इकट्ठिया कीता और ए उपदेश कीता, ए जाता पाता इंसान दिया बनाईया हैं, सानु सारे नु बनान वाला एक परमेश्वर है, आओ फिर एक जगह बह के उसका सिमरन करिए। तन गुरु नानक साहब का अवतार होया, देवी देवतियां अपछरा खुशी दे गीत गाए, आओ फिर इस खुशी दे मौके

आपे ही सब आप है प्यारा, आपे थाप उथापे, आपे वेख विगसदा प्यारा, कर चोज वेखे प्रभ आपे, आपे वणतरण सबत है प्यारा, आपे गुरमुख जापे, जप मन हर हर नाम रस ध्रापे, अमृत नाम महारस मीठा, गुर शब्दी चख जापे, आपे तीरथ तुलहड़ा प्यारा, आप तरे प्रभ आपे, आपे जालो ली हर आपे, आप अभुल न भुलई प्यारा, दूजा अवर न जापे,

आपे धरती आप है राहत आप जमाए पिसावे आप पकावे आप भांडे दे परोसे आपे ही बैखावे आपे जल आपे दे छिंगा आपे चुली भरावे आपे संगत सद

कतहु सुचेत होय के चेतना कुचार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो, कतहु भिखारी होय के मांग तू फिरत भीख, कहु महादान होय के मांगो धन देत हो, कहु महाराजन को दीजत अनंत दान, कहु महाराजन ते छीन चित लेत हो।

कहूँ देवतान के दीवान में विराजमान, कहूँ दानवान को गुमान मत देते हो। कहूँ इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी से, कहूँ इंद्र पदवी छिपाए छीन लेते हो। कतहूँ विचार अविचार को विचारत हो, कहूँ निज नार पर नार के नकेत हो। कहूँ बेदरीत कहूँ तासों बपरीत, कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ।

कऊ शस्त्रधारी कऊ विद्या के बिचारी कऊ मारत आहारी कऊ नार के नकेत हो कहूं देव बानी कहूं सारधा भवानी कहूं मंगला मेड़ानी कहूं श्याम कहूं सेत हो।

পাপন দি তুন্দ সাই হয়েছে। কোই কর্ম কাণ্ডা বিচ পিয়া, কোই যোগিয়া দে পিছে পিয়া, কোই সিদ্ধা দে মগর লগিয়া হ্যা। परमेश्वर दा नाम सारिया नू विसर गया सी। पाप विच रुझिया होया संसार, ते जदो अपने बढ़ाए हुए संसार दी ए हालत वेखी निरंकार ने के मेरी बनाई हुई सृष्टि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईरखा द्वेष दी अग विच जल रही है। निरंकार ने गुरु नानक दा रूप बनाया, गुरु नानक दा रूप तार के संसार ते जगत जीयां नूं तारन वास्ते आ गया।

राय जी ने पछाण लिया ए ता मेहता कालू पटवारी दा पुत्र है। आख्या नानक तू मैं क्यों कीता? आख्या मैं ता उस प्रभु दे रंग विच बैठा सा, मेनू नहीं पता। मैं ता कालू नू सदिया। मेहता जी जदों आए, राय ने आख्या वेख वही तेरे पुत्र नानक ने गाइयां मजियां।

ताई साहब जी ने भी गंगा विचों एक लोटा लिया ते आख्या पंडित जी आ की कर रहे हो। पंडित कहिंदा जी मैं सूरज देवता नू जल दे रहे। साहब जी कहन लगे अच्छा आ पूर्व वाल करके पंडित जल दे रहा सूरज नू ते गुरु नानक ने पश्चिम वाल मुंह कर लिया ते लोटे दे नाल जल पाना शुरू कर दिता। सात संगत बोलो श्री। पंडित कहन लगा सूरज इस पासे है।

0: गुरु रामदास, धन गुरु अमरदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। मैं ठीक हो गया, मेरा रोग तो उतर गया, मैं चल फिर सकता। धन रजनी, ये तेरे सदक का फल है जिहड़ा अज मैनू नवा जीवन मिलिया। रजनी रजनी, मैं ठीक हो गया, मैं चल फिर सकता रजनी, मेरा रोग तो उतर गया रजनी, मैं ठीक हो गया।
1: कौन हो तुसी?
0: मैं कौन है? तुसी मैं पछाणिया नहीं रजनी जी?
1: मैं कहनी मेरे पति जिन्होंने मैं इतने छटके गई सी, कितने ने, कितने ने मेरे पति?
0: मैं ही थोड़ा पति है रजनी जी, थोड़ा पिंगला। तुसी मैं चिंतपुर नहीं लग गए, तुसी मैं संजी दे दर्शन कराए, तुसी मैं गोंदवाल लग गए, तुसी मैं छबीर वाले बाबा जी तो पानी पिया। मैं थोड़ा पति है, मैं थोड़ा पिंगला है रजनी जी, मैं थोड़ा पिंगला।
1: यह तो ठीक है, पर थोड़ा रोग किवें ठीक होया?
0: यह सारी करामात इस जल्दी है। थोड़े जान तो बाद मेरे कन्ना फिर वही आवाज आई, कागो हंस करे, तो मैं रिड़दा रिड़दा ए छपड़ी के कंडे ते आ गया और टाणी फड़ के पानी च उतर गया। जब बाहर आया तो मेरे सारे जख्म तोते पे सन।
1: तुसी टाणी फड़ के पानी कैसे ना?
0: हाँ।
1: केरे हाथ नाल?
0: ऐस नाल।
1: अच्छा, ता फिर तुसी ऐस हाथ में भी पानी पाओ, मैं अपनी अखा नाल इस जलदा चमत्कार देखांगी।
0: आओ मेरे नाल।

0: हे परमात्मा, तू मेरी पुकार सुन ले। माता दे दरबार श्वेखिया सपना साकार कर देता। तेरी लीला ब्रह्मपारे। तन गुरु अमरदास।
1: तन गुरु रामदास। रजनी
0: स्वामी,

जगत नू तारन लई गुरमत संगीत परंपरा दी दात बख्शी। रहमता परी इस परंपरा नू समूह गुरु साहबान ने सदियां तो सिखी जीवन दे अनिखड़ अंग वजो स्थापित कीता है। दसम पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी बाणी दे अखुट खजाने विच वक वक रागां गायन शैलियां अते संगीत छंदां दी अदूती दात प्रदान कीती है। आप जी दी पवित्र बाणी शब्द हजारे पातशाही दसवीं हर गुरसिख हिरदे विच वसी हुई इलाही बाणी है। श्री दसम ग्रंथ साहिब विच इस बाणी नूं वख वख रागां विच अंकित कीता गया है। गुर किरपा अते समूह संगतां दे सहयोग द्वारा संत बाबा सुच्चा सिंह जी ज्वदी टकसाल दी अगवाई विच विस्मादनाद संस्था गुरमत संगीत दे शुद्ध ते मौलिक स्वरूप नूं प्रचारन दी सेवा विच लीन है। आओ सरवण करिए राग निर्णायक कमेटी द्वारा प्रवाणित स्वरूपा अनुसार शब्द कीर्तन शब्द हजारे पातशाही दसवीं।

पाट जिसका नाम मथुरा है, आप कहिंदा है जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए। जो भी प्यार नाल मन करके गुरु अर्जन देव पातशाह दा नाम जपेगा, जो एक वरा मन करके प्यार नाल आखेगा धन गुरु अर्जन देव, सारे प्यार नाल जपो धन गुरु अर्जन देव। जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए, ओ फिर कदे भी गर्भ जूनिया विच नहीं पवेगा, 84 लाख त्रिगट जूनिया तो मुक्त हो जाएगा। जब लो नहीं भाग लिलार उदे, तब लो परम ते फिरते बोताय। मथुरा कहिंदा है पट के जद तक साडे भाग नहीं समझागे असी संसार विच विचर रहे सी, लेकिन कलयुग दे विच आके सानू जदों गुरु अर्जन देव पातशाह दे दर्शन होए ते सचमुच फिर उस हरी विच और गुरु अर्जन विच कोई फर्क नहीं है, क्योंकि गुरु अर्जन देव पातशाह गुरु नानक दे पंजवें स्वरूप, पंजवें गुरु नानक धन गुरु अर्जन देव महाराज, और जिस गुरु नानक दी उस्तत गावे जनकाद जुगाद जुगेसर हर रस पूरन सर्व कला, गावे सनकाद साध सिदादक मुन जन गावे अचल छला, गावे गुण तोम अटल मंडलोए, भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानी। उस गुरु नानक दे गुण जदों राजे जनक दा दरबार लगिया सी और उस दरबार विच वड्डे वड्डे रिखी महापुरख तपस्वी जोगी आके राजे जनक दे चरणा दी धूड़ लै रहे सन, क्योंकि भाई गुरदास जी कहिंदे ने भगत वड्डा राजा जनक है गुरमुख माया विच उदासी। राजा जनक जिसने बड़ी तपस्या की और भगत वड्डा क्यों गिणिया गया है, क्योंकि राजे जनक ने राज विच रह के अपने आप नू माया तो निर्लेप रखिए। सात संगत बोलो श्री ते भाई गुरदास जी कहिंदे इस वास्ते राजा जनक वड्डा है। ते एक वरां दा जिक्र राजा जनक देव लोक नू गया, देवते भी लोचते हैं कि कोई जपन वाला साड़ी पुरियां विच चरण पावे। जिस वेले राजे जनक नू देव लैके देवते लैके अपनी पुरियां विच जा रहे सन ते रस्ते विच बड़े रोण दी कुरलाउण दी आवाज आई, राजे जनक ने पुछया ए कौन रो रहे हैं, तां देवतियां ने दस्या महाराज ए नरक हैं जिथे पए होए जीव अपने कर्मा दे अनुसार भोग भोग दे, क्योंकि इन्हां जीयां ने जाके संसार ते नाम नहीं जपिया, भगती नहीं कीती, इस वास्ते भगती ना करन करके इन्हां ने अपना मनुखा जन्म जेड़ा हीरे लालां तो भी महंगा सी, जेड़ा स्वास हीरे लालां तो भी महंगे सन, इन्हां ने मिट्टी विच रोल दिते। ताई आखिया बंदगी ना कीती आ हीरा जन्म पाके, जे तेनू मनुखा जन्म वाहिगुरु ने दिता है और तू बंदगी नहीं कीती तां तू अपने मनुखा जन्म नू कौडियां दे बदले वेच छड़िया, उस स्वासां नू कौडियां दे बदले वेच छड़िया। ताई आखिया

सबो कुछ अर्पण कर। पर मेरे पातशाह कहंदे ने उना दे तन मन अर्पण करी जिन्हां ने अपना तन मन वाहिगुरु दे अर्पण कीते। फिर उना ओ परचून दे मालिक नहीं हुंदे, ओ तां थोक दे व्यापारी हुंदे। थोक विच पदार्थ देंदे ने, लोकां नूं वंडदे हन, पर अपना सब कुछ वारिया हुंदा है वाहिगुरु तों।

जन्म मनुख भक्ति करे जन्म मरण तो छुटकारा नहीं मिलता। पर पातशाह कहने ने बड़ा सुखैन तरीका है, महापुरुषां दे चरणा दी पूजा कर, उना दे चरणा ते सियाणपां छड़ के जदों अपना सिर रखेगा। बस बाबा जी कहंदे ने चवां दी मार तो तैनू छड़ा लैणगे। कबीर जी ने भी आख्या

अंतर जोत राम परगासा गुरमुख बिरले जाने भगत कबीर साहब का उचारिया होया ए शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज।

संसार अमृत दी एक बगीची है, जो उस पूर्ण परमात्मा ने बनाई है। जिवें एक पौरा फुल दे रस विच मस्त होके फुल दियां खिड़ियां पत्तियां विच अपने आप नूं जा बनाउंदा है, जिवें कोई पंछी अपने खंभां नाल हवा नूं उलारा दे के आकाश विच उड़दा है, तिवें उह गुरमुख नाम रस विच मस्त होके पूर्ण खड़ाओ नूं अपने हिरदे विच टिकांदा है ते सोच मंडल विच हुलारा दे के प्रभु चरणा विच उड़ारी लांदा है। उस गुरमुख दी उस अडोल अफुर अवस्था विच उस दे अंदर कोमलता रूप मानो एक कोमल बूटा उगदा है, जो उस दे शरीर दी तृष्णा नूं सुका दिंदा है। कबीर साहब कहिंदे ने, मैं उस इंसान दा उस गुरमुख दा दास हां जिसने अपने अंदर उग्या होया एक कोमल बूटा देखिया। साध संगत, यह ब्रह्म ज्ञान दी अवस्था दा शब्द है जेड़ा इस कहानी नूं जान लैंदा है कि परमेश्वर दे नाल गुरु मेल करांदा है, और परमेश्वर दे नाल जद मेल हो जाए ते फिर ओ

कि जिन्हां ने अपने गुरु दे नाल प्रीत लाई, गुरु ने नाम दे के परमेश्वर नाल मिला दिता, ते ओ फिर परमेश्वर दा रूप हो गया। उसने इस कहानी नू जान लिया कि संसार परमेश्वर दा रूप है, ते जिन्हां ने इस गल नू जानिया ओ फिर परमेश्वर वर्गे।

मैं सिमरन करके ये गल जान ली है कि सिमरन करन दे नाल जिथे दुखां दा नास हुंदा है उथे जग जीवन सिंह जीव समाना जीवन देन वाला जेड़ा परमात्मा है ओ दे नाल जीव दा मिलाप हो जांदा है और ओ इंसान इस कहानी नू जान लैंदा है सिमरन सदका कि सारे विच परमेश्वर दा नूर है ओ दी जो

तृष्णा रूपी जल सुख गया, मन दी हर तृष्णा खत्म हो गई, क्योंकि नाम जिहड़ा है ये सारिया भुखा तृष्णावां खत्म कर दिंदा। हर इंसान एक चीज मिले तो दूसरे की इच्छा मन विच पैदा होती है, हर इंसान भज रहा है, जिद को एक चीज है उसनु दूसरी चीज की लोड़ है। एक देश का जी राजा है, राजा बन के भी उन्हें तसली नहीं, कुछ होर चाहता है। कोई वजीर है, वजीरी लेके भी वो रजिया नहीं, कुछ होर चाहता है। हर इंसान भज रहे है, पर सतगुरु जी कह रहे हैं सुख नाही बहुते धन खाटे, सुख बहुती माया विच भी नहीं।

पैगंबर अपने नाल जोड़े कि सब कुछ मैं हां, मैं परमेश्वर हां, समझो वो परमेश्वर तू भुलिया होया, तो जिहड़ा परमेश्वर नाल जोड़े असल विच समझो ये परमेश्वर नाल जुड़िया होया है, क्योंकि ये परमेश्वर नाल जोड़ रहे हैं।

एक अल्लाह एक वाहेगुरु संसार ते भेजण वाला है, इस करके ओदे नाल जुड़ो। गुरु इन्हां गल्लां दा ज्ञान करांदा है कि मेल करना है ता परमेश्वर नाल करो। ते सतगुरु जी फरमांदे हन गुरु दा मेल किन्ना जरूरी।

हजार सूरज होवे सौ चंद्रमा होवे पर जे गुरु नहीं मिलिया इस चाननी का क्या फायदा जे मन दे विच ज्ञान नहीं मन विच अज्ञान है।

परमेश्वर दी कहानी दा पता नहीं लगदा। गुरु परमेश्वर दी कहानी दसदा है कि सारे विच परमेश्वर है, ते जेड़े गुरु दा उपदेश सुनदे ने ओ फिर इस कहानी नू जान लेंदे ने कि सारे विच